0: ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
2: MGM 90.8 FM साथ है।

0: मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
1: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
0: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजी नगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, पोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको एन 5, छत्रपति संभाजी नगर।
2: लिली

0: मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
1: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
0: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू. ऑल्सो डिरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर. अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप,
1: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस. गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा.
0: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in.
2: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए.
3: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है.
2: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग.
3: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर.

0: ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।

0: जलोगे, हाथ मलोगे।
1: हेलो, हाय, नमस्कार, छत्रपति संभाजी नगर।
2: तुम्ही ऐकत आहात MGM 90.8।

0: गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आरजे अदनान आपके साथ है आपकी आज की ये संडे वाली मॉर्निंग गुड करने इन द शो।
1: वो बातें 90s की बातें याद आती हैं, वो बातें
2: 90s की बातें विद आरजे अदनान ऑन MGM 90.8 FM।
0: 90s वाला शो, जी हाँ, 90s वाले शो में हम बात करते हैं 90s के कुछ बेहतरीन यादगार पलों की, गानों की, हसीन नगमों की और कुछ प्यारे प्यारे किस्सों की। तो इसी पर बात करने के लिए आज का अपना ये शो होता है, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि 90s के दिन ना तो बहुत प्यारे होते हैं और संडे के दिन ना तो हर कोई अपने घर होता है, और स्पेशली 90s के किड्स तो घर होते ही है, आप हो, आपके पापा हो, उनका ज़माना हो, तो वो क्यों ना याद किया जाए और फिर से वो सब चीज़ें ताजगी भरी मोमेंट में आपके सामने पेश की जाए। तो इसीलिए इस शो का मकसद ही वही है कि 90s के दौर में आपको ले जाना। तो आज के शो में बहुत सारी बातें होगी, मुलाकातें होगी, वैसे नाश्ता वगैरह तो आपका हो गया, बट 90s के वक्त में ना तो एक सुपर डुपर हिट वाला नाश्ता कौन सा था हमारा, पता है? वो है चाय के साथ चपाती यानी कि रोटी खाना। अब कुछ कुछ जेंजी लोग कहेंगे कि यार चाय के साथ रोटी कौन खाता है, भाई साहब कभी खाकर तो देखिएगा कितना लाजवाब और बेहतरीन मजा आता है। तो आज ऐसे ही कुछ टॉपिक पर बात करेंगे, तब तक के लिए आने वाले गाने एंजॉय कीजिएगा, थोड़ी देर में लौट कर आता हूँ कुछ बढ़िया सी बातें लेकर। इसी के साथ आज क्या कुछ खास है अपने थिएटर के अंदर, कौन कौन सी फिल्में लगी है और आप वीकेंड किस तरीके से एंजॉय कर सकते हो, उन सभी पर बातें भी होगी, क्योंकि वीकेंड भी है और 90s का शो भी है, तो सब पर बात होना लाजमी है इन द शो 90s वाला शो, ओनली ऑन MGM 90.8 FM।
1: वो बातें 90s की बातें याद आती हैं, वो बातें
2: 90s की बातें विद आरजे अदनान ऑन MGM 90.8 FM।

0: PhD programs
1: across diverse fields from engineering and AI to law.
0: Apply now at www.mgmu.ac.in
1: or call 9067612000.
2: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
3: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनके गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
2: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
3: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।

0: फार्मसीमध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
1: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
0: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू. ऑल्सो डिरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर. अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
1: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस. गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा.
0: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in.
2: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए.
3: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है.
2: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग.
3: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर.

0: गुड मॉर्निंग दोस्तों, 90s की बर्थडे पार्टी याद है आपको? मतलब एकदम बढ़िया सा सेलिब्रेशन होता था। आरजे अदनान आपके साथ इन द शो।
1: वो बातें 90s की बातें याद आती हैं, वो बातें
2: 90s की बातें विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।
0: बर्थडे पार्टी यानी कि एक्साइटमेंट की कोई कमी नहीं। उस जमाने में ना तो किसी का बर्थडे आने का मतलब होता है पूरी क्लास को पहले से ही पता होता था पार्टी तो मिलने ही वाली है, क्योंकि बर्थडे वाले बच्चे के हाथ में होता था स्पेशल कलरफुल वाले चॉकलेट और हैप्पी बर्थडे वाला कुछ लिखा हुआ। और सबसे खास बात 90s में ये होती थी कि स्कूल जाना पड़ता था लेकिन यूनिफॉर्म को उस दिन छुट्टी मिलती थी। जी हाँ, अगर टीचर ने पूछा आज यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहना तो बच्चा कहता था कि सर आज तो मेरा जन्मदिन है, बर्थडे है। और वो क्लासरूम के अंदर सबको चॉकलेट बांटना, मेलेडी चॉकलेट, और जो अपना बेस्ट फ्रेंड होता था ना तो उसे दो चॉकलेट देना, और हमारे क्रश को हम चार चॉकलेट देते थे वो बर्थडे वाले दिन, और उसी में हमारी सबसे बड़ी खुशी होती थी। देखो यार, यही तो एक मौका था होता था अपने क्रश के साथ बात करने का और उसको स्पेशल फील करवाने का। बाकी पूरे क्लास को एक एक चॉकलेट मिलता था लेकिन अपने बेस्ट फ्रेंड को दो और क्रश को चार चॉकलेट मिलते थे। देखो अगर ये बात मैं कह रहा हूँ और जिन लोगों के चेहरे पर स्माइल आई है ना, समझ जाना कि उन्होंने ये सब किया है। तो पतिदेव के अगर चेहरे पर यह सुनने के बाद स्माइल आई है तो पत्नी जी जरा गौर कीजिएगा, कौन थी उनकी क्रश, जरा पूछिएगा क्या हाल था। खैर, अब मैं किसी की जिंदगी में बवाल तो नहीं क्रिएट कर रहा हूँ लेकिन 90s की कुछ यादें ताजी करने की कोशिश कर रहा हूँ। हर किसी का एक अपना पास्ट होता है और 90s की कुछ बेहतरीन यादें होती है। और 90s में ना तो यार बर्थडे पार्टी बहुत स्पेशल होती थी। कैसे, क्या, किस तरीके से, बात होगी ना इस पर भी, लेकिन धीरे धीरे क्योंकि 90s के शो में आराम से आगे बढ़ेंगे और बेहतरीन से किससे हम जानेंगे कुछ ही देर के बाद। तब तक के लिए गुड मॉर्निंग एंड स्टे ट्यून।
1: वो बातें 90s की बातें याद आती हैं, वो बातें
2: 90s की बातें विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।

0: गुड मॉर्निंग आरजे अदनान आपके साथ है और 90s के शो में आज 90s के बर्थडे पार्टी के बारे में हम बात कर रहे हैं इन द शो।
1: बातें 90s की बातें याद आती हैं, वो बातें
2: 90s की बातें विद आरजे अदनान ऑन MGM 90.8 FM।
0: 90s के वक्त में बर्थडे आना मतलब एक बेहतरीन मौका होता था दोस्तों को पार्टी देने का। आज के जमाने में बर्थडे पार्टी मतलब किसी 5-स्टार होटल में 3-स्टार होटल में 4-5 दोस्तों को लेकर एक केक मंगा कर कुछ खाना ऑर्डर कर हम पार्टी करते हैं। लेकिन 90s के दौर में ऐसा कुछ नहीं था भाई। एक तो हम बच्चे थे और पार्टी होती थी अपने खास दोस्तों के साथ, वो भी अपने ही घर में। और इसके अंदर मेनू क्या होता है पता है क्या? एक चूड़ा, एक समोसा, किसमी चॉकलेट और केक का एक टुकड़ा, और बस ये मिल जाए। यार हाँ, एक चीज़ ऐड करना बाकी है, वो है चिप्स। जी हाँ, ये चीज़ मिल जाए ना तो भाई 5-स्टार का खाना भी इसके सामने फीका फीका और फीका ही पड़ता था। आज भी मुझे याद है जब बचपन में हमारा बर्थडे हुआ करता था ना तो मम्मी 2 दिन पहले से तैयारी में लग जाती थी चूड़े के पैकेट बनाने के लिए, क्योंकि पार्टी है भाई। और फिर पापा बर्थडे के दिन ना तो शाम के टाइम पर गर्मा गर्म समोसे लेकर आते थे और सभी दोस्त फ्रेंड्स मेरे घर पर आते थे। केक कटिंग का प्रोग्राम होता था और इसके बाद एक एक प्लेट के अंदर सबको चूड़ा, केक, एक चॉकलेट मिल जाता था और बच्चे इतना खुश होते थे कि मानो उनको दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज मिल गई है। और इसी के साथ कोल्ड ड्रिंक हो जाए तो बात ही बन जाए। तो 90s के दौर में पार्टी बर्थडे यही तो सीन होता था। आज भले हम अपने दोस्तों के साथ किसी होटल में जाकर बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, इंस्टाग्राम पर स्टोरीज लगाते हैं, उस दौर में ऐसा कुछ नहीं था। बस सिंपल सा नए कपड़े पहनना, स्कूल में सुबह चॉकलेट बांटना, शाम के वक्त दोस्तों के साथ पार्टी करना अपने घर में, और पार्टी का मेनू अभी जैसे बताया मैंने वैसा ही था। मतलब सिंपलिसिटी में अपनापन था। आज अपनापन है, सिंपलिसिटी कहीं नजर नहीं आती है। बस पैसा फेंको और पार्टी एंजॉय करो, इस तरीके से होता है। बट कम खर्चे में दिल खुश करने की वाली पार्टी ना 90s के वक्त में होती थी। तो ऐसी कुछ पार्टी थी। इसी के साथ और भी 90s के कुछ बेहतरीन लम्हे याद करते हैं कुछ ही देर के बाद। तब तक के लिए
1: वो बातें 90s की बातें याद आती हैं, वो बातें
2: 90s की बातें विद आरजे अदनान ऑन MGM 90.8 FM।

0: University Institute of Hotel Management is ready to help you make your career in hotel management, aviation, culinary arts, bakery and event management. Join NGM University, IHM. For admission, contact now at 87930-47544 or visit mgmu.ac.in.
1: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
2: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
1: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
2: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजी नगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजी नगर।
3: योर ड्रीम इज टू बिकम एन इंजीनियर, एन आर्किटेक्ट, और टू मेक अ नेम फॉर योरसेल्फ इन द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, सो MGM University's JNEC इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। कोर्सेज एक्रेडिटेड बाय AICTE एंड COA, BTech, MTech, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर एंड MCA। हियर यू गेट एक्सीलेंट प्लेसमेंट, इनोवेशन and research facilities and a global network of more than 20,000 alumni. Merit and sports scholarship is also available. And the biggest thing is not to wait for the cap round. MGM University. For admission, call on 940-4474-266 or visit mgmu.ac.in.

0: 90s का दौर और 90s का जन्मदिन, इस पर हम बात कर रहे हैं आरजी अदनान आपके साथ इन द शो।
1: वो बातें 90s की बातें याद आती हैं, वो बातें
2: 90s की बातें विद आरजी अदनान ऑन MGM 90.8 FM।
0: और 90s के वक्त में जो बर्थडे की पार्टी होती थी अपने घर पर, सब दोस्त मिलकर आते थे और एंजॉय करते थे, और यहाँ पर कुछ गेम भी हम खेलते थे। गेम कौन से पता है क्या? वही जो गेम तब से लेकर आज तक चले आ रहे हैं और उसमें एवरग्रीन वाला फील होता ही था। सबसे पहला गेम होता था अंताक्षरी। जी हाँ, सब फ्रेंड्स एक साथ

0: इस मस्ती वो दोस्ती की हंसी आज भी दिन में उतनी ही ताजी है, और शायद इसीलिए आज भी जब हम मिलते हैं ना दोस्तों, तो बातें शुरू हो जाती है, याद आती है बचपन की बर्थडे पार्टी की। एक बात आपने गौर की होगी कि आज कितने भी बड़े हम हो जाए, जब अपने स्कूल के फ्रेंड्स मिलते हैं तो बात बचपन की निकल ही आती है, क्योंकि जिंदगी में आप कितने भी बड़े हो जाए, बचपन की यादें कभी मिटती ही नहीं है। तो ये तो खास बात होती है बचपन की और 90s की, तो ऐसी बातों को ताजा रखने की कोशिश मैं करता हूँ अपने 90s वाले शो में। इसके बाद एक बेहतरीन टॉपिक पर बात भी होगी, बट कुछ ही देर के बाद। तब तक के लिए
1: वो बातें 90s की बातें याद आती हैं, वो बातें
2: 90s की बातें विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 FM।

0: Wondering what's next?
1: Unlock your future at Mahatma Gandhi Mission University,
0: where innovation meets excellence. Admissions are open
1: across undergraduate, postgraduate, diploma and PhD programs
0: across diverse fields from engineering and AI to law.
1: Apply now at www.mgmu.ac.in
0: or call 906761-2000.
2: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
3: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
2: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
3: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको एन 5, छत्रपति संभाजीनगर।

0: गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आरजे अदनान आपके साथ है और 90s वाले बर्थडे की आज हम बात कर रहे हैं इन द शो।
1: बातें 90s की बातें याद आती हैं, वो बातें
2: 90s की बातें विद आरजे अदनान ऑन MGM 90.8 FM।
0: वैसे सॉफ्ट लॉन्चिंग के बारे में आपने सुना होगा, मतलब अभी जो गणपति फेस्टिवल हो गया उसके अंदर ये सॉफ्ट लॉन्चिंग बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा था, यानी कि जो आपकी क्रश है, गर्लफ्रेंड है, उनको घर पर बुलाकर दर्शन के लिए हम अपने फैमिली इंट्रोड्यूस करवाते थे, सॉफ्ट लॉन्चिंग उसे ही कहते हैं। आज के जेंजी वाले ट्रेंडिंग वाले जमाने में अब सो कॉल्ड बड़े बड़े लोग कहेंगे यार ये सॉफ्ट लॉन्चिंग क्या होता है, या हमको तो पता ही नहीं है ये ऐसे कैसे शब्द यूज कर रहे हैं आज का यूथ। अरे भाई, आज का यूथ है, इनके नए नए लफ्ज है जेंजी वाले, वही मैं यूज कर रहा हूँ। यानी कि सॉफ्ट लॉन्चिंग यानी कि आपके गर्लफ्रेंड हो, क्रश हो, उसको आपको फैमिली से मिलवाना है किसी और बहाने से, तो उसको सॉफ्ट लॉन्चिंग कहते थे। ये आज के जमाने में होता था, लेकिन 90s के वक्त में कब होता था, जन्मदिन के टाइम पर ही, बर्थडे के टाइम पर ही। जो आपकी क्रश होती थी ना, उसको अगर आपको घर बुलाना है, मम्मी पापा को इंट्रोड्यूस करवाना है, तो बर्थडे ये सबसे स्पेशल दिन होता ही था। सज धज के आती थी आपके घर पर और एक स्पेशल गिफ्ट भी आपके लिए लेकर आती थी और फिर आपके चेहरे की चमक ही अलग हो जाती थी। फिर आप अपने मम्मी पापा से इंट्रोड्यूस करवाते हो ये कौन है क्या है, तो मम्मी कहती अच्छा तुम्हारी बहन है, तो आपका चेहरे का रंग पूरी तरीके से उड़ जाता था। फिर आप कहते थे कि मम्मी बहन नहीं है, मेरी ये बस दोस्त है, और उस बस दोस्त के अंदर ना तो माँ सब समझ जाती है, क्योंकि माँ तो माँ होती है और माँ को भी पता है कि जस्ट फ्रेंड और फ्रेंड में क्या फर्क होता है। सो 90s के वक्त में सॉफ्ट लॉन्चिंग होती थी अपने क्रश की या अपने गर्लफ्रेंड की, वो थी बर्थडे वाले दिन। सो ऐसे कुछ बर्थडे के स्पेशल मोमेंट्स थे 90s के वक्त में। वैसे आपके कौन से स्पेशल मोमेंट्स थे 90s में बर्थडे वाले, बताइए जरूर मुझे, DM कीजिएगा इंस्टा पर RJ अदनान इस इंस्टा पेज पर। और बाकी तो 90s का दौर याद करते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए।
1: 90s की बातें याद आती हैं, वो बातें
2: 90s की बातें विद आरजे अदनान ऑन MGM 90.8 FM।

0: फार्मसीमध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
1: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
0: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू. ऑल्सो डिरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर. अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
1: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस. गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा.
0: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in.
2: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए.
3: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है.
2: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग.
3: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर.

0: यार सच में हम चाहे कितने भी बड़े हो जाए लेकिन 90s की यादें ना दिल से उतरती नहीं है। आरजी अदनान आपके साथ इन द शो।
1: वो बातें 90s की बातें याद आती हैं, वो बातें
2: 90s की बातें विद आरजी अदनान ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।
0: वैसे सारे जेंजिस को मैं आज एक कहना चाहूँगा, देखो यार 90s के शो में हम 90s की बात करते हैं, आप लोगों ने तो 90s का ज़माना कभी जिया ही नहीं होगा क्योंकि तब तक तो आप पैदा ही नहीं थे। तो एक काम कीजिए ना, आज आपके भाई के साथ या आपके पापा मम्मी के साथ बैठकर उनसे ज़रा पूछिएगा कि यार 90s का 80s का उनका ज़माना कैसा था, वो किस तरीके से सेलिब्रेशन करते थे और किन छोटे छोटे चीज़ों में वो खुश हो जाते थे। भले आज जेंजिस के पास ना तो नेटफ्लिक्स है, प्राइम है, OTT प्लेटफॉर्म है, सब कुछ है, लेकिन 90s के वक्त में ये सब कुछ नहीं था। बस एक एंटीना था, उसी के जरिए ना तो वीकेंड पर फिल्में लगती थी और वो देखते थे और उसमें खुश हो जाते थे। तो ये दौर कैसा था ज़रा जेन ज़ी पीपल आप अपने पेरेंट्स से पूछिएगा बैठकर और उनसे नई नई चीज़ें जानने की कोशिश कीजिएगा 90s वाले, तब आपको समझेगा कि यार उन्होंने कैसा दौर जिया है और आज आप कितना अच्छा दौर जी रहे हो। सो बताइएगा मुझे बाद में कि क्या कुछ आपने जाना। एंड जो 90s किड्स है ना तो उनसे एक दरख्वास्त है कि यार मैं 90s के शो में किन किन टॉपिक पर बात करूं ज़रा मुझे आप बताइएगा, क्योंकि आप जब तक मुझे नहीं बताओगे ना तो मुझे भी समझ में नहीं आएगा कि यार आप क्या कुछ सुनना चाहते हो और कौन सी यादें ताज़ा करना चाहते हो। तो इंस्टा पर DM कीजिए RJ अदनान इस इंस्टा पेज पर, या तो फिर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो 9359320080 इस व्हाट्सएप नंबर पर। तो मकसद यही है अपने 90s के शो का कि आपको 90s के दौर में ले जाना, तो याद से मैसेज कीजिएगा। तब तक के लिए RJ अदनान लेता है आपसे अलविदा, मिलते अगले हफ्ते 90s के कुछ बेहतरीन यादों के साथ। तब तक टाटा बाय बाय सी यू, 90s का जमाना याद करते रहिए, मोहब्बत करते रहिए और सुनते रहिए।
1: वो बातें 90s की बातें याद आती हैं, वो बातें
2: 90s की बातें विद आरजे अदनान ऑन एमजीएम 90.8 एफएम।

0: What's next?
1: Unlock your future at Mahatma Gandhi Mission University,
0: where innovation meets excellence. Admissions are open
1: across undergraduate, postgraduate, diploma and PhD programs
0: across diverse fields from engineering and AI to law.
1: Apply now at www.mgmu.ac.in
0: or call 906761-2000.
2: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
3: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
2: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
3: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।

0: फार्मसीमध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
1: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
0: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू. ऑल्सो डिरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर. अवेल अट्रॅक्टिव स्कॉलरशिप,
1: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस. गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा.
0: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in.
2: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए.
3: डॉक्टर अमोल पात्रीकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है.
2: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग.
3: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर. और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर.

0: फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: ये है एनजीएम 90.8 FM।

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे,
2: मैं हूँ साथ तेरे,
1: तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती।

0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: MGM 90.8 FM साथ है

0: फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: ये है MGM 90.8 FM,
2: साथ है तो बात है।

0: तक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: यह है एनजीएम 90.8 FM।

0: फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: ये है NGM 90.8 FM।

0: शक ना लाओ, अब जो मिलना।
1: अच्छा जी,
0: अब जो मिलना बांध के सहरा ही मिलना सरकार।
1: तो अगले इतवार
2: ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
3: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
2: ये है FGM 90.8 FM।

0: wondering what's next?
1: Unlock your future at Mahatma Gandhi Mission University,
0: where innovation meets excellence. Admissions are open
1: across undergraduate, postgraduate, diploma and PhD programs
0: across diverse fields from engineering and AI to law.
1: Apply now at www.mgmu.ac.in
0: or call 906761-2000.
2: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
3: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
2: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
3: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको एन 5, छत्रपति संभाजीनगर।

0: फ्रीक्वेंसी नहीं, यह आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: ये है MGM 90.8 FM।

0: फार्मसीमध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
1: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
0: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू. ऑल्सो डिरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर. अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
1: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस. गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आज प्रवेश निश्चित करा.
0: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in.
2: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए.
3: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है.
2: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग.
3: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर.

0: आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है FGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
2: FGM 90.8 FM।
0: हेलो, हाय, नमस्कार, छत्रपति संभाजी नगर।
3: तुम्ही ऐकत आहात FGM 90.8

0: wondering what's next?
1: Unlock your future at Mahatma Gandhi Mission University,
0: where innovation meets excellence. Admissions are open
1: across undergraduate, postgraduate, diploma and PhD programs
0: across diverse fields from engineering and AI to law.
1: Apply now at www.mgmu.ac.in
0: or call 906761200.
2: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
3: डॉक्टर अमोल पात्रिकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
2: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
3: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।

0: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
1: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
0: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू. ऑल्सो डिरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर. अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
1: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस. गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आजच प्रवेश निश्चित करा.
0: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in.
2: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए.
3: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है.
2: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग.
3: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर.

0: Wondering what's next?
1: Unlock your future at Mahatma Gandhi Mission University,
0: where innovation meets excellence. Admissions are open
1: across undergraduate, postgraduate, diploma and PhD programs
0: across diverse fields from engineering and AI to law.
1: Apply now at www.mgmu.ac.in
0: or call 906761200.
2: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए।
3: डॉक्टर अमोल पात्रिकर मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है।
2: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग।
3: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, फोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर।

0: फार्मसी मध्ये गुणवत्ता आणि संशोधन पूर्ण शिक्षणासाठी
1: MGM विद्यापीठाच्या डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्युटिकल सायन्स मध्ये प्रवेश घ्या,
0: जिथे डिप्लोमा इन फार्मसी अँड बॅचलर ऑफ फार्मसी मध्ये ऍडमिशन सुरू. ऑल्सो डिरेक्ट ऍडमिशन इन बी फार्मसी सेकंड इयर. अवेल अट्रॅक्टिव्ह स्कॉलरशिप्स,
1: अत्याधुनिक अशी लॅबोरेटरी, उच्च शिक्षित आणि अनुभवी स्टाफ, भव्य दिव्य असा MGM कॅम्पस. गुणवत्ता आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी आज प्रवेश निश्चित करा.
0: फॉर ऍडमिशन कॉन्टॅक्ट 9371714265 और विजिट www.mgmu.ac.in.
2: स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एडिक्शन, क्या ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं? तो हेल्प लेने में देर मत कीजिए.
3: डॉक्टर अमोल पात्रीकर, मानसोपचार और व्यसन मुक्ति तज्ञ, न्यूरोसाइकेट्रिक्स, इनकी गाइडेंस में मेंटल हेल्थ और एडिक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जाता है.
2: यहाँ अवेलेबल है मेन और वुमेन के लिए सेपरेट एडमिशन फैसिलिटीज, एडिक्शन ट्रीटमेंट, ECT काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, चाइल्ड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, फैमिली काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग.
3: उत्कर्ष हॉस्पिटल, अदालत रोड सिग्नल, विवेकानंद कॉलेज रोड, सतीश मोटर के पीछे, समर्थ नगर, छत्रपति संभाजीनगर, और दिशा हॉस्पिटल, संत तुकाराम नाट्यगृह रोड, पोस्टर होम्योपैथी कॉलेज कैंपस, सिडको N5, छत्रपति संभाजीनगर.

0: कुछ आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: MGM 90.8 FM साथ है।

0: ये सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी नहीं, यह है आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: ये है एफएम 90.8।

0: आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
2: MGM 90.8 FM,
3: साथ है तो बात है।

0: MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है।
1: हेलो, हाय, नमस्कार, छत्रपति संभाजी नगर।
2: तुम्ही ऐकत आहात MGM 90.8 FM।

0: फ्रीक्वेंसी नहीं, यह आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी सोच,
1: जहां हर बात होती है सीधे दिल से दिल तक और हर आवाज को मिलती है एक नई पहचान।
0: ये है NGM 90.8 FM।

0: आवाजें बस सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर तक महसूस होती है।
1: जब हर गली हर मोहल्ला एक दूसरे से कहने लगे, तब बातें सिर्फ सुनने की नहीं समझने की होती है।
0: ये आवाज है MGM 90.8 FM की, जहां हर लफ्ज के पीछे होती है एक ताकत, एक जज्बा, एक साथ।
1: MGM 90.8 FM
0: साथ है तो बात है।